निर्देशन से छुटकारा मिलना चौकड़ेगा अनुभव ठीक हो पहले ध्यान जीवन समस्या रहना रात का पता मुझे बहुत अगला काली साग पात दाल घुड़ी ग्यारह आला मच्छी शिकार फल फूल अलग युक्त खाना नियमित रूप में खाई जंक फूड कम करिए संतुलित खाना

की क्षेत्र में तांत्रिक प्रक्रिया जो दिख रही शरीर में जो है खास खाते पड़े पर

0: ना मुझे पहले बार कंप्यूटर ड्राइवर नहीं सर दूंगा वो उपाय तो सब नहीं उसे मैं बुरे आने पर लिखा हूँ सर
1: संदेश

दिखा रहा है कि आसार बाहर करके साढ़े पांच बजे समय प्रयोग अथवा रिपोर्टिंग का लगी ऑनलाइन आवेदन दिन सकने अब राष्ट्रीय समाचार कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सुब्रत गौतम ने सार्वजनिक खरीद केन्द्र में देखिए जटिल

लेकर पिए तो पानी जो है आजकल तो थोड़ा पीने डाले तो वह अपने पुरान खाने में ठीक रहे, अपना दूर करे महसूस करे, वैसे रोक के मिला एक डेढ़।

0: खाना का संकल्प नियमित रूप में आयरन कैल्शियम आयरन सिंचाई स्वस्थदायक सुरक्षित परिवार
1: सरकार।

0: स्वास्थ्य रिपोर्ट दिया गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी प्रतिबद्धता घटी नैर्मिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वस्वत रूप में वृद्धि अली यहां स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक पहल से कौशल अस्पताल बांसगढ़ी में संपर्क करना हाथी का लोट कर दी
1: अस्पताल सेवा
0: 24 घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए
1: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्याज छाती कलेजोर नशा मोटू चेक जांच करी था
0: प्रत्येक दिन नशा तथा निम्न सर्जरी हाथ जोड़ने तथा जनरल सर्जरी प्रसूति सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मोटू एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा सम्पन्न लैब पर सेवा उपलब्ध भा शिशुको मुखबाट बिना नशा दाखिल हातद्वारा निचल्ना बिरामीहरूका फिजियोथेरापी तथा एक्सपेन्डर थेरापी विधिवश उपचार गरिदिथा
0: नशा दाखिल बिरामीहरूकै दिन अपरेसन फिजियोथेरापी तथा एक्युपन्चर थेरापी से सफल उपचार गर्दै
1: 24 घण्टा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिदिथा असहाय नागरिक एकल महिला अनाथ बाल बालिका अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक मुकान्तपूर्ण सेवामा 10% छुटके व्यवस्था गरिदिथा कौशल्य अस्पताल प्रणाली बाँसगढी शाखा 5 बाँसगढी बर्दिया प्राण पेट्रोल पम्प दक्षिण बजार
0: सम्पर्क फोन नम्बर 084-4-00192 और 084-4-00210 बाँसगढी बर्दिया सँगसँगै फोन 11-14

0: लिए हमेशा की ये ड्यूटी अशुभ अमूल्य संपत्ति अरमानी का कारण से छह महीने पूरी तरह से था और उससे बना अरमानी नियंत्रण करना हमारे शत्रु का दायित्व का कर्तव्य हो
1: हमारा
0: सब कुछ यहाँ पर क्षेत्र में हर मिले खत्म होगा शुक्र तुम्हें आना से आगा ताकि मौजूद समारोह से सफाई करी
1: बीड़ी चूहक मात्र टीका आदि बुटाई बनों पर निखार की
0: बनों पर गांव घर में काम नहीं करी
1: बनों में पिकनिक खाए गए से उस क्षेत्र में रोल आदि बनाए से बुटा के चलना छोड़ी
0: सुक्का मौसम में गले में आगे लगा वस्तु सराई लाइटर लेकर भी नहीं
1: बनों में आगे लगा देखने से लगभग बढ़ गया है समुदाय दल को प्रहरी में खबर करी सब कुछ सुरक्षित तरीका से आगे बुटाई
2: सजाए

0: सांस्कृतिक पर दिया व्यवस्था के स्वास्थ्य सेवा में प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य पर भी हमारी प्रतिबद्धता घटी नागरिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वसुलभ रूप में बीती यहाँ कल स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक पहल करने से कौशल्य अस्पताल राष्ट्रीय में संपर्क करना आर्थिक अनुरोध करती
1: अस्पताल से दे देना सेवा
0: चौबीस घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए
1: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्याज छाती कलेजोर नशा मुटु चेक जांच लिखा
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हाथ जोड़ने तथा जनरल सर्जरी पशुटी सेवा नागरिक घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा सम्पन्न लैब सेवा उपलब्ध भा पैरालाइसिस को मुंह बांध बिना नशा

0: रूस पूरा समाचार
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुसार नेपाल में 30% वयस्क जनसंख्या उच्च रक्तचाप जोखिम में छोषित तथा तैयारी खाना जंक फूड तथा डिब्बा का खाना में सोडियम धीरे हुए मृत्यु रोग को जोखिम बढ़ाने गर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एवटा व्यक्ति ने दैनिक 5 ग्राम समय नून सेवन कर उपयुक्त होने सलाह दिया।
0: नियमित रूप में हिडुल और शारीरिक व्यायाम ने मृत्यु स्वस्थ होने में मदद कर
1: संतुलित भोजन पर्याप्त निद्रा सकारात्मक सोच एवं चिंता तनाव बाट मुक्त रहता मृत्यु रोग बाट बच सकता।
0: 40 वर्ष कटे नियमित स्वास्थ्य जांच करो।
1: चीनी पदार्थ मात्रा मसु कम खाओ। खाना में सागपात और फल फूल खाओ।
0: मद्यपान और धूम्रपान सेवन न करो।
1: स्वस्थ रहो। सुखमय जीवन
0: बीमा।

अधिवेशन 5 हजार 6 बजे हिंसा अधिवेशन में भाग लेने वाले पालिका का आर्थिक बजट 2023

बताया कि स्थिति अनुरक्षी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केंद्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल विज्ञान प्रतिष्ठान संबद्ध सर्वदोष अनुसंधान केन्द्र संगठन सहकार्यमा

0: स्वास्थ्य सेवामा प्रतिबद्धता, नागरिक स्वास्थ्य प्रति हामी प्रतिबद्धता गति, मेरिक स्वास्थ्य सेवामा सदस्यवत रूपमा केटीआईले यहाँको स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक परेकाले कौशल्य अस्पताल बाँसकरीमा सम्पर्क गर्न हार्दिक अनुरोध गराती।
1: अस्पताल सेवा
0: 24 घण्टा डाक्टरको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचार गराउँदै
1: प्रत्येक दिन बिहान 8 बजे से सन्ध्या 6 बजेसम्म विशेषज्ञ फिजिसियन डाक्टर से प्याज छाती कलेजो नसा मुटु चेक जाँच गरिन्छ।
0: प्रत्येक दिन नसा तथा न्यूरो सर्जरी, हात जोड्ने तथा जनवन सर्जरी, प्रसुति सेवा, नाकका घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा चेक जाँच गराए।
1: 24 घण्टा डिजिटल एक्सरे, भिडियो एक्सरे, ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भा। सुविधा सम्पन्न ल्याबको सेवा उपलब्ध भा। प्यारालाइसिसको मुकाबिला, नसा दाबैलक, हात गोडा अनि चल्ना, बिरामी हुनका फिजियोथेरापी तथा एकुपेन्चर थेरापी विधिमा से उपचार गरिन्छ।
0: नसा तब्दीले बिरामी हुनकाले बिना अपरेसन फिजियोथेरापी तथा एकुपेन्चर थेरापी से सफल उपचार गर्छ।
1: 24 घण्टा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिन्छ। असहाय नागरिक, एकल महिला, अनाथ बालबालिका, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक हुन सेवामा 10% छुटीय व्यवस्था गरिन्छ। कौशल्य अस्पताल प्राली, बाँसकरी शाखा 5, बाँसकरी बर्दिया, पुरानो पेट्रोल पम्प दक्षिण बजार।
0: सम्पर्क फोन नम्बर 084-4-00-192 हो, 084-4-00-210। बाँसकरी बर्दिया संसदीय फोन।

0: संगीतमचारी संदेश।
1: मानवीय एवं शारीरिक क्षतिवृत्त सचेतना जगेना उद्देश्य

0: सकेपछि स्वस्थ जीवन अपनाइन्।
1: निशाना रोग झट्ट भनन्, ध्यानी दिनले जीवन खट्ट भई,
0: सन्तुलित खाना खाई, व्यायाम शब्द गरी, स्वस्थ जीवन अपनाई।
1: रेडियो गुरुबाबा एफएमको सहकार्यमा स्वास्थ्य कार्यालय भर्तियासी जनप्रचारी सन्देश।

0: निवेदन दिया गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा में प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी प्रतिबद्धता है की व्यवहारिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वस्व रूप में दिखेगी यहाँ स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक तरलता कौशल्य अस्पताल घास गरी में संपर्क करना हार्दिक अनुरोध कराती
1: अस्पताल से तेजी सेवा
0: चौबीस घंटा भागवत के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए
1: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्याज छाती कलेजो नशा मोटो चेक जांच करेगा
0: प्रत्येक दिन नशा तथा रिव्यू सर्जरी हाथ जोड़ने तथा जनरल सर्जरी पशु की सेवा नाकरण घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए
1: चौबीस घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मोटो एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा संपन्न लैब को सेवा उपलब्ध भा पैरालाइसिसो को मुख भाग होना नशा ताप बैलक हाथ द्वारा निकलना बिरामी मुख नकला फिजियोथेरापी तथा एकुटेनर थेरापी विधि में से उपचार कर दिखा
0: नशा तब बिले बिरामी मुखन के बिना ऑपरेशन फिजियोथेरापी तथा एकुपंजर थेरापी से सफल उपचार कर जाए
1: चौबीस घंटा एम्बुलेंस का व्यवस्था करेगी आशा है नागरिक एक महिला अनाथ बाल बालिका अपांग ज्येष्ठ नागरिक मुखन पूर्ण सेवा में 10% छूट के व्यवस्था करेगी।

सरासरी बर्दिया पुरान पेट्रोल पम्प दक्षिण पाटन सम्पर्क फोन नम्बर 084400192 हो 084400200200।